0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनाईबाट आउँछ। गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: जय मसीह, म देविका लामा। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 MHz।
1: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम धन्यवाद बिहानी।
2: यो समय हो धन्यवाद बिहानी।